तुम मात पिता हम बारिक ते तुम्हारी कृपा में सुख कने कोई न जाने तुमरा उचेते ऊंचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्रतानी तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दया वै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दर दा ध्यांतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चों साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई देख के अनिट कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तखतां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जां जां खालसा जी साहिब तां तां रचिया रियायत देख तेख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जी ओ श्री ननकाणा साहिब ते और गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दी दान ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी।

सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरु ते पाया पाया अमृत गुरु कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुर भला पाया कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूए अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बहिठिया सोही है सब ना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तना श्री महला पंजवा औखी घड़ी न देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखै अपने को सास सास प्रतपाले औखी घड़ी न देखण देई

प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत रहा। मन बिलास भय साहिब के अच

अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समाथ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुर राम दास तै बसै नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुर राम दास चितै बसै।

0: ध्यान तरे फिरत सगल जुग, कबू को कऊ पावे आत्म प्रगास को, वेद बानी सहित ब्रंच जस गावे जाको, सिम उन गै नत जात कबिलास को, जाको जोगी जति सिद्ध साधकन एक तप, जटा जूट पे किए फिरत उदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को।
1: वाहिगुरु जी, जाम गुरु होए बल,

होए बल, ज्ञान अर त्यान अनन पर जाम गुरु होए बल, सबद साखी सो सच्चे पर सच्चे कर। जो गुरु गुरु है निस जपै, दास पट पे नत कहै, जो गुरु नाम रिद में तरै, सो जन्म मरण दोहूं थे रहे। जो गुरु गुरु है निस जपै, दास पट पे नत कहै, जो गुरु नाम रिद में तरै, सो जन्म मरण दोहूं थे रहे।

स्वरूपे कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो सहस्रपाणे नमो अश्रुमाणे अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे।

0: जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्टिष्टे
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोक्ष पालं अच्छेदी अपेदी अनामंग कामंग तेरा जोर चात्री छन जले हैं थले हैं पीत हैं अपे हैं भुजंग पर्यात छंद्या गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग प्रमाथे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो राज राजे नमो साज साजे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी चरपट छंत प्रसाद अनवृत कर्मे अनवृत धर्मे अचल राजे अटल साजे सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग देवं सर्वंग पेवं रुआल छंत प्रसादाद रूपनाथ मूर्त जोन पुरख पार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ न जाहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक देव बेव न जाने जय बेद और कतेब तात्मात्मा जात जाकर जन्म मरण बहीन लोग चौदह के बिके जग जाप ही जय जाप परम रूप पुनीत मूर्त पूरण पुरख पार कालहीन कला संचुक्त काल पुरख देश अंगराग न रंग जाके जात पात न नाम आप रूप मीक अनुस्त एक पुरख अवदूत अंगहीन अपंग अनातम एक पुरख पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नित मत बार छन त्व प्रसाद गुणगन उदार में मह पार अनपो प्रकाश निज ननास राजान राज बानान पान इंद्रान इंद्र बालान बाल अनपूत अंग अंग मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म चाचरी छन त्व

0: भगवती चंद्र प्रसाद की जाहर जहूर है के हाजर हजूर
1: है
0: के साहेब दिमाग है के हुस्नुल चराग है
1: के कामल करीम है के राजक रहीम है
0: के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है
1: करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है
0: गनीमुल के राज है गरीबुल निवास है
1: हरिफुल शिकान है रियासल फिकान है
0: कलंकन परनास है समस्तुल निवास है
1: कंजुल करीम है रजाक रहीम है
0: समस्तुल जुबा है के साहेब के राज
1: है कलंकन परनास है बैतुल निवास है
0: के सरबुल गवान है हमेशुल रवान है परम परम ईसे समस्तुल जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है
1: करीमुल कमाल है कजुर्रा जमाल है
0: के अचलन प्रकाश है अमितो सुबास है
1: के अजब स्वरूप है के अमतो प्रभूत है
0: के अमितो पसा है की आत्म प्रभा है
1: के अचलन अनंग है के अमतो अपंग है
0: मधुपा चंत प्रसाद मुन मन पर नाम गुन गन मुदाम
1: हर भर गंज हर नर प्रपंज
0: अन गन पर नाम मुन मन सलाम
1: हर नर अखंड भर नर
0: अन पव अनाज मुन मन प्रकाश
1: गुन गण प्रणाम जल थल मुदाम
0: अंचिज अंग आसन अपांग
1: उपमा पारगत में तुदार
0: जल थल अमंड दिस विश अपार
1: जल थल महंत दिस विश बेअंत
0: अन पव अनाज ते तर त्रास
1: अजान बाहु एक के सुदाहु
0: ओंकार आद कथनी अनाद
1: खल खंड ख्याल गुर भर अकाल
0: कर कर प्रणाम चित चरण नाम
1: अंचिज गाता जिजना पात
0: अंजज गाता अनरंज पात
1: अंटुन पनार अंटा

0: तब चरणन में रे हमारा अपना जान करो प्रतपारा
1: मैं सुबह तुंगा वो आपाजे मोई बचावो
0: सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब है करतारा।

0: भजन आप सवारी
1: सिवकन को सिवकन सुख दियो सतरन को बल मोहबत कियो
0: कर के अंदर की जाने थले बरे की पीर पिछाने
1: चीटी ते गुंचर सुला सब पर कृपा दर्श कर फूला
0: संतन दुख पाए की सुख पाए सुरंग के सुखी
1: एक एक की पीर पिछाने कट कट

0: प्रजति
1: तुमरा लखाना जाय पसारा कैपिक सजा प्रथम संसारा
0: रूप नु स्वरूपा रंग प्योर आपके रूपा
1: अंदर जे रसे तस्कीनी उत्पुष भान बहुर अचदिनी
0: बहुला जो हवे तो कौन सी हो वो संगर के तो
1: सदरी सृष्ट खाय अचंब वाचुगा स्वरूप से अंब
0: रचा मेरी तुम करो सिख वारे सिख संगरो
1: दुष्ट थे तो पाता सकल मलेश करो रणकाता

को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता मन बाचत फल पावे सोई दुख न दिसे व्यापत कोई अड़िल दुख दर्द पर निकट न ते नर के रहे हो जो या कि एक बार चौपाई को कह चौपाई पादु सुधि अश्मी रविवारा तीर सतत्र ग्रंथ सुधारा सोया राम रहीम पुराण पुराण अनेक है मत एक न मान्यो।

कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साच नाम दार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, सदा कुर्बान किता गुरु बैठो जिस दिया ए वडियाइया। वाजे पंच शब्द तित कर सपा गए, कर सपा गए शब्द वाजे कला जित कर तारिया।

0: प्रसादी सहज उपजय एव सहसा एव जाय।
1: जियो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया।
0: वड़ा रोग लगा मरण मनु विसारे।
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेदालिया।
0: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
1: जियो निर्मल बारो निर्मल, बारो त निर्मल जियो निर्मल सदगुरु ते करनी कमानी।
0: कूड़ की सोए पहुँचे नाही मनसा सच समानी।
1: जन्म रतन जिनी खटिया बले से मन जाए। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जन्म रतन जिन

0: सतगुर मिलिए दिव दृष्ट होई। साचे सुनने नू पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। सच अलख वडानी ताकि गत कही ना जाए।
1: नानक

मात पिता हम बारिक तुमरी कृपा में सुख कोई न जाने तुमरायन उचेते ऊंचा सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते तुमरी गत मित तुम ही जान नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौने दया वह ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के निठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जी ओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण निटाणियां दे ताण ने उट्टियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ओ महाराज आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले दे दीवान सजे सजे होए दीवाना अंदर नेतनेम जी दियां बाणियां दे जाप नौवें पातशाह जी ओ आप जी दे सलोकां दे जाप उपरंत अमृत वेले आई संगत वल्लों समूह टैलियां वल्लों सवाईयां दे जाप सतगुरु गुरबाणी पढ़दे आं आप जी दे हजूर विचरदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शनी दाराई संगत नूं अपने दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा नामदान इशनान बख्शना आप जी दे हजूर आप जी दे दर घर दे सेवक परिवार वल्लों बच्चा विवहान सिंह दे जन्मदिन दे संबंध विच सतगुरु जी आप जी दे पावन पवित्र स्थानां ते कड़ा प्रसादियां देगां दी सेवा प्राप्त कीती सतगुरु जी
ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਣਾ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੀਬੀ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ।

मन रे कौन कुमत तैलिनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो न गुरजन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहि निरंजन तीरै तै खोजत उदयाना बहुत जन्म पर मत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस देहे पाए पद हर भज नानक बात बताई

0: तन मन फिका होए, फिको फिका सदिया, फिके फिकी सोए, फिका दरगा सटिया, मोथुका फिके पाए, फिका मुरखिया खिए, पानल है सजाए महला पहला।
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल,

असन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो इकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश स आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश पूता माता की आशीष निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिप पुख सामदी नूर अरसों कुरसों जटीए तुद जिथे सच्चे पातशाह

संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्तु तजी नह जाई नित नित राखे उतारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो।